अंधारम सुंदरी है माते हंगिला उन्द पुंचिला मैं आ इंदिने गाता ऐते पुंची पैंचलांगे नहती है कि खाता कलानम पालो मैं किला हित सोतु जिंग प्रबोधें पिरिया अन्नति बुना ऐते तिंग मना कर अन्नद पढ़िए कान है ऐ हित ऐतले हिटियो मैं तम्हे मावा तेरे निकटने निर्नामिकाय आदरणीय तरंग ओ मगे जीवित रावे महाम्बे आदरे मत महम बात वाला माव होया गे नावे लघु मवाद का मादर एक एम आई सर स मामला में आ अभी अपे वाला वस्त्र गाना कुना तामते अम्मा की चूरी पुता ऐगे हदवते थामा और द दहाय दुलाय पुड़ी कॉल्ले कीन्ना ये वागे मामत अभी कुछ वायस रिगेत अभी देना तो लेन लमा मनसट अभी देना था मत गौरव करना आदरे करना हमदाम है माए यक्कलिन इशानी तरंगा मम इसर मगे पुता पुड़ी काले यार मनोहारी देवा गेनवा मगे अम्मट हा महत्य अठा तेक मगर पुताट वड़ा एस दिली सनहटी अदवागे मातकाई यागे अम्मीगे पोड़ी हित्र वड़ा ए हित ए वेलावट आदरिन पिरेना महत्य आगेना इससर एयालु गेदरट हम देम कले अदो यामाट इन्ना कियला कियना कुट मागे हित पिरेना जीवा

सुबमान दारम रहता रंगा मतक विलट्ठा होंदम उसु काले कियला कियुवट मैं केवल याना काले ट थाम बेरियो ना मगे मतक विलट्ठा उसु अक्वेन्ना निर्नामिकाए मंदारम रहताई विनादितिस हाय

सुबमान दारम रैक्ट रंगा मोहन पते देख के लसन नील पाते अस्ते का ऐस मगी जीवित है मेवेला तामा बैवट न देखत सागर मांग मावत अतरिंगे हाँ दूर रट किंदा मगे लोके में उन मगे मैनिका आसक्त रिंग उन्नत तो या मगे वेटन है महुस मगे महुस मगान नौया ओ आसा तिंदु रिंग उन्नत मुदु हा तिंदु रिंग उन्नत मगे वेटन है महुस मगे ममांगे को या हुस मगान नौ है पैवनत नौनत में ही नित मांग हरियात रहे रत्नपुर गिले मालन धनुष